अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना, ये पूर्ण सिख दी निशानी, ये पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे? आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए, तन मन धन दा माण।

भाई मंद जी राज भुल गए, जिस राह तो गए सानू राज भुल गए। तुरिया आउंदिया एक पुराना खूह, जिस खूह दे बनेरा भी कोई नहीं। भाई मंझ जी तुरे आउंदे ने रब दे रंग विच, उस प्यारे दे गीत गाउंदिया गाउंदिया बरसात जोर दी। पर जदों भाई मंझ जी उथों दी लंघण लगे पुराना खूह, भाई मंझ जी खूह विच डिग पए। अपने आप नूं संभालिया, लकड़ां नूं बोझिया, लकड़ां किते डिग ना पए। पर इकदम खूह विच डिगे पर इधर साहिब धन गुरु अर्जन देव पातशाह कीर्तन दा आनंद माणदियां इकदम संघासन तो हिले। भाई गुरदास जी नूं कहण लगे, भाई गुरदास मेरा प्यार वाला सिख भाई मंझ डिग पिए। जानी जान सतगुरु संघासन तो उठे, सिखां नूं नाल लिया, कुछ रस्से नाल लै ले, अज उस थां ते आ पहुंचे जिथे भाई मंझ खूह विच खलोता है, सिर ते लकड़ां है। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह आए, भाई मंझ नूं तकिया ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा मन भर गया, नेत्रां विचों जल विया। ते भाई गुरदास वल तक के कहण लगे, ओ भाई गुरदास तके आ मेरे प्यार वाले, जिन्हां दा मन नीवा निम्रता ते प्यार दे विच रहण वाले, लकड़ां नहीं डिगण दित्तियां, सिर ते लकड़ां चुकियां भाई मंझ खड़ोते। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह ने उपरों प्यार नाल इक बोल बोलिया, ओ सिखा आ लकड़ां सुट दे।

ए नहीं पता कि शैतान गुरु अर्जुन देव पाछा बचन कह रहे खूह विच खलोत्या कह लगे ओ सिखा जे मेरे नाल प्यार है मैनू बाहर कढ़ना चाहुंदा है ते फिर कृपा कर आ गुरु दे लंगर दिया लकड़ा हां पहला लकड़ा नू बाहर कढ़ दे फिर मैं भी बाहर आ जावांगा किते सेवा ना व्यर्थ चली जावे इस वास्ते ते लकड़ा चुकी खलोता किते लकड़ा गिलिया ही ना हो जाए अज दी सेवा व्यर्थ ना हो जावे जदों भाई महद जी ने कहा ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा फिर मन भरिया कहण लगे ओ भाई गुरदास आ वेखे आ मेरे प्यार वाले सिख हन आ रूप है सिख दा जिन्हां दे हिरदे विच भावना है जिन्हां दे हिरदे विच प्यार है क्यों ना मैं ऐसे सिखां तो वारी जावां क्यों ना ऐसे सिखां तो कुर्बान जावां जेड़े मेरे तो कुर्बान हो जांदे गुरु तो अपना आप निशावर कर जांदे इन परवाह नहीं करदे ओ भाई मंझ ते इम्तिहान दा परचा तां पिया पर भाई मंझ इम्तिहान दे परचे विचों पास हो गया भावी ने से ऐसी खेल खेडीए पर हुण भाई मंझ उस इम्तिहान दे परचे विचों पास होके विखाया।

तीर्थ नावां जे तिस भावां बिन भाणे के नाए करी जे ती सिरठ उपाई वेखां बिन करमां के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जियां का इक दाता सो मैं विसर न जाई।

असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार असंख मौन लिव लाए तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गड़बड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहें।

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादी।

आखह पड़े करह बखियाण। आखह ब्रह्मे आखह इंद आखह गोपी तय गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह कीते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव कीते आखह आखण पाहे कीते कह कह उठ उठ जाहे।

गावै तुहनो पौन पणी बैसंतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देव त्या दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से ईत नो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है, पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जिवत सदी वडियाई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग

भाग होआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हौ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त जूनी सह भंग गुर प्रसाद जियो डर।

करण पलाह करे बहुतेरे सा तन महल न पावे बिन कर्मा किश पाइय नाही जे बहुतेरा तावे लब लोभ अहंकार की माती माया माहे समाणी इनी बाती सह पाइय नाही पई कामणे आनी जाय पुशो सोहागणी वाह है किनी बाती सह पाई है जो किश करे सुपला करमानी है हिकमत हुक्म चुकाई है जां कह प्रेम पदार्थ पाई है तौ चरणी चित लाई है सह कह सो की जय तन मनो दी जय ऐसा परमल लाई है एव कह सुहागणी भैणे इनी बाती सह पाई है आप गवाई।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर गलख पारा, चिंता करो हमारी, जल थल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावां तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं शपै संत प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे अरूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूर्त अन भौ प्रकाशम तोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहान गिण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत मंत्रण कहत तब सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग भेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग टाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सोए कै नमस्तंग नेक नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग भूते नमस्तंग लोके नमस्तंग असोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग गमे नमस्त सत रमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग पाते नमस्तंग अमजबे नमस्त सत अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्त सत देव नमस्तंग पेव नमस्तंग जनमे नमस्तंग सुबन में नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्त सत दयाले नमस्तंग वारने नमस्तंग मरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व तंदे नमो सत बंदे नमस्तंग नरसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्त सत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी संत प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म

पाने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी नामे, समस्ती स्वरूपे, परपंगी परमाथे, समस्ती विभूते, कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरम परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, भेखीय परमीय भोगीय भुगते, नमो जोग जोगेश्वरम परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाहं, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं सनाने, नमो मंत्र मंत्रं, नमो यंत्र यंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अधो उर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता, परं परम परमेश्वरं प्रोष पालं, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं, अछेदी अभेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्त सत्तामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं, आदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रयात छंद, अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निधाने, नमस्तं निर्नाथे, नमस्तं प्रमाथे, नमस्तं अगंजे, नमस्तं अपंजे, नमस्तं अकाले, नमस्तं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व यंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे, समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिदं निवासी, चरपट शांत प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल शांत प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त, जोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल, जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूर्त जोन आद शेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, जत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत ताम हूं नह जाहे, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, देव भेव न जान ही जेह वेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जान ही केह जेव, तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन, चक्र बकर फिरै चतर चक मान ही पुरतीन, लोक चौदह के विखै जग जाप ही जेह जाप, आदेव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जेह थाप, परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचो सुजंभव गढ़न भंजनहार, कालहीन कला संयुक्त काल पुरख आदेश, धर्म ताम सो भरम रहत भूत अलख भेस, अंग राग न रंग जा कह जात पात ना नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम, आप रूप मीक अनुस्तते एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार, सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख, सर्वशास्त्र न जान ही जेह रूप रंग अर रेख, परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित, कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवई बहुचित, मधुपार शंत प्रसाद गुण गण उदार, महिमा अपार आसन अपंग उपमान, अंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास, आजान बाहो शाहान शाहो, राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल, रंकान रंक कालान काल, अनपूत अंग आबा अपंग गत मित अपार, गुण गण उदार मुनगन प्रणाम, निरपय निरकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड, आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा परणाढ्य अंड अंड बाढ़्य, चाचरी शंता प्रसाद।

हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुगत सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम।

गंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे। त्रिभुक्त स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं कि नरकं प्रणास हैं, पृथ्वीउल प्रवास हैं, निरुक्त प्रवाह हैं, सदैवं सदा हैं। विभुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं। विभुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं। चाचरी छंद अपंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अपूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सो नित हैं, अजात हैं, अजाद हैं। चरपट क्षमता प्रसाद सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता। रसावल शंता प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तातय न मातय न जातय न पातय। निरसाकं श्रीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं। भगवती शंत प्रसाद के जाहर जहूर हैं, के हाजिर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुस्नल चिराग हैं, के कामल करीम हैं, के राज करहीम हैं, के रोजी दहिंद हैं, के राज करहिंद हैं, करीमुल कमाल हैं, के हुस्नल जमाल हैं, गनीमुल खराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकन हैं, हरासुल फिकन हैं, कलंकं प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तुल जुबां हैं, कि साहिब किरा हैं, कि नरकं प्रणास हैं, बहिस्तुल निवास हैं, कि सर्वल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परम परम ईश हैं, समस्तल अदीश हैं, अदेशुल अलेख हैं, अमेशुल अपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, कि जुरत जमाल हैं, कि अचलंग प्रकाश हैं, कि मित्तो सुबास हैं, कि अजब स्वरूप हैं, कि मित्तो विभूत हैं, कि मित्तो पसा हैं, कि आत्म प्रभा हैं, कि अचलंग अनंग हैं, कि मित्तो अपंग हैं। मद पार शंत प्रसाद मुन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अर बर अगंज, हर नर पर पंज, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अनशिज अंग आसन, अपंग उपमा पार, गत मितोदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, तिर तर तुरास, अजान वाहो एक सदा हो। ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अनछिज गात, आज जिना बात, अनझंज गात, अनरंज बात, अन टुट भंडार, अनठट अपार, आडीठ धर्म, अत तीठ कर्म, अणबरण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंदता प्रसाद, करुणालय है, अर्कालय है, कलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्वोबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विसंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप हैं, अथपा थप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, तारणी त्रित हैं, अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विसंबर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पवपंजन हैं, अरगंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, आकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, पुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे,
नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम ततंग ततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तुल परणामे समस्तुल परणासे अगंजल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते एक रति विनेक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहां पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सोसा सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराद पजौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिपत अंत पसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुन्द्र लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पिशाह को शीस निवायो को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो
ਕੋਵ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋਵ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ ਬਹੁਰ ਅਸੁਰ ਕਾ ਕਾਠ ਸਮਾਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਨਾਥਾ ਦੁਤੇ ਬਾਨ ਸੋ ਦੋ ਅਰ ਕਰ ਕਾਠ ਦਯੋ ਅਸਤੁਜ ਨਰ ਨਾਹਰ ਪੁਨਰਾਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ ਪੁਹਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ ਸਭਨ ਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਧਨ ਧਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੇ ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੋਹਲੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉਂ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੁਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਬਰੀਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਏ ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜੂ ਕਰੀਏ ਹੋ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤਰ ਦਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਥੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲਮੋ ਬਧ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰਜਾ ਧਰ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਭੇਦ ਭੇਦ ਅਰਿਆਲਮ

वाहे गुरु।

ये लड़ीवार प्रकरण महाराज जी सेवा ले रहे ने। छे विशेषताइयां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दियां और बेनती है, छे एंड नहीं, समुद्र के किनारे ते आनंद ही है, अंत नहीं पा सकते। छिया चो चार विशेषताइया आप जी श्रवण कर चुके हो, अज पंजवी दी बारी है। चार केवल बोल के लंघदे हैं, डिटेल विच आप जी सुन चुके हो गुरु।

सेवा लैण कोई संगत नवी आई हुंदी है, केवल बोल के चारे विशेषताइयां लंघदे आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पहली विशेषता ही धरती ते जिन्ने अवतार आए

सारे ग्रंथ रब दी गल करदे ने, एक गुरु ग्रंथ साहिब साध संगत जेड़ा रब नाल गल्लां कराउंदा है। एक बारी गज के आखो सतनाम। इस बाणी नूं कोई समझे ये रब नाल गल्लां है। बाबा ईश्वर सिंह जी का वचन है, कहंदे सी कविता जड़ी ना कविता कवितावां ये चटनी है चटनी, थोड़ी जी चटनी खाओ स्वाद जरूर लगदी पर कदी इहदे नाल पेट नहीं भरदा, पेट रोटी नहीं भरदा, रज रोटी ना। बाणी रोटी दी तरह है जड़ी रज देंदी। रब नाल गल्लां करांदी तीजी विशेषता ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी, एक ओंकार तो लेके 18, 10, 20 तक किते भी हां नूं नहीं आण दिता, हां नहीं आण दिता। ये नाल नाल चानना है कि वेख लै मेरे चो चानण आ रहा है हां नहीं, नहीं तो होवे गुरु नानक अपने नां दे नाल नानक गरीब, नानक सद, नानक विचारा, नानक नीक, नानक दास, नानक दवाना, नानक बताला, कितने हाँ नहीं आना। थानू पता भाई गुरदास जी बाणी लिखते सी ते छेवें पातशाह नूं वखाणी, एक दिन वार लिखी सी ते खीरली पंक्ति सी जे गुरसांग वरतदा सिख सिदक ना हारे। नानक जी हां सी गुरु नूं ध्यान लवे सिख डट जे। गुरु परचा पावे ध्यान लवे तो डट जे। आ कई तुहाडे चों कहिंदे कोई नहीं जी जो ने करदा चंगा, ये बड़ी वड्डी वस्ता है, इत्थे ते बख्शिश मंगनी। इन्नी पंक्ति सी जे गुरु सांग वरतदा सिख सिदक ना हारे। कोई दसो छेवें पातशाह ने किड्डा वड्डा परचा पा, पैसे भेजे घोड़े खरीदन काबल, ठीकरियां दृष्टि बनाती ठीकरियां बन गईयां, तंबू पाड़ के चले गए काशी। उथे कथा करन लग पे भाई गुरदास जी, ते छेवें पातशाह 2-4 महीने बाद सुनिया भेज दे साडा चोर आया ते मुश्कां बन के भेज दे। तन भाई गुरदास जी कहण लगे मैनू जल्दी ले जा, केवल इशारा लैणा हौण वेख लो जगह। जदों आए ते गुरु साहब ने छेवें पातशाह ने रुका अगे करता रुका, ऐ तुसी लिखी जे गुरु सांग वरतदा सिख सिदक ना आरे। वरताया सांग भजे क्यों तंबू पड़ के आपको सतना डना सी। जे बाबा नंद सिंह दी संगत बाबा जी का वचन जे कहंदे सतगुरु साडा इम्तिहान ना लई परचा ना पाई, इम्तिहान ते परचा ओदा लै जिन्हू कुछ पढ़ाई आंदी होवे, असी ते अगे ही फेल आ। किमां पुरश फेल का कीमत आ गया। सतगुरु ने रुका अगे करता तुसी लिखी है जे गुरु सांग वरता सिख सिदक ना, फिर सांग वरताया पै ठिकरियां बन गई क्यों गए। संगत केवल इशारा लेना। भाई गुरदास जी ने दूजी वार उचारी जी की खीरली पंक्ति सी जे गुर परमाए सांग सिख क्या करे विचारा, भी जे गुरु नूं ध्यान लवे ते सिख विचारा कुछ नहीं कर सकदा। गज गया आखो सतनाम। गुरु कवे मैं तेनूं इहदे ते पेपर पाणा फेल करके विखाणा ते फेल कर लूंगा नहीं। संगत इन्ना इशारा लवे
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੈ। ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਡਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ, ਗੁਣ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਦੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਦੀਪਕ ਰਾਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ, ਨਾ ਮੇਘ ਰਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਘ ਰਾਗ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜੇ ਤੇ ਅੱਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਰੋਣੇ ਕਲਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। 10 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਨੇਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6:30 ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 10 ਮਿੰਟ।

पंजवी विशेषता ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल तुसी साध संगत जी गल्लां कर सकते हो, कई हैरान हो जाएंगे।

रंग न लाए, संता से भी रंग न लाए, साकत संग विकर्म साकत संग विकर्म कमाए। दुर्लभ देह कोई अज्ञानी, उज्जड़ अपनी

संयम जत दिन काहे जने नावो धो तिलक चढ़ावो सोच वे।

राष्ट्रपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन उहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरा चले जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिन माए उतारी अनक पुने चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख घनेरे सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत्या कावै जय मार्ग इहो जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ते आये नानक गुरुमुख प्रमगत पाईए छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तै पार पराही अनक बिघन जे आए संकारै हर का नाम तत्काल उतारै अनक जोन जन्मै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हो मैला मल कबू न तोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईए साध के संग जय मार्ग के गने जाहे न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जय पैड़े महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महा प्यान तपत वो काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहां तिरखा मन तुझे आकर खै तै नानक हर हर अमृत बरख भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जनकोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औगद साध कमात हर जन के हर नाम नितान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न पंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर तन जन को आप प्रभु दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बो करे नानक जन संग केते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत जित वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विड़ पागी पाईए संत की सेवा नाम ते आईए

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होंदा, मेरा काम इन्ना है। ओए भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगदी, जांदियां भी देर नहीं लगदी। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार विच बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जांदे ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जांदे ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? ये ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए, एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिसदा नाम सी। इहने सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां, ऐ भलिया तेनू धन भी दिता, सोहणे महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़िआं विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है उह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधीए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बणाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भी किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਭਾ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ।

ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ।

में भी होए ने पर हमेशा जित तरमिया दी होई है आ तरमिया दा हमेशा ही बुरा अंत होए है। ए शब्द भगत कबीर साहब जी दा उचारिया होया जिद विच भगत जी बयान करदे ने के प्रहलाद भगत ने

देवते ने हरनाक्ष जी करवा लिखा तुनू नारद मुनि दे हवाले कर दिता। क्या तुनू नाल लेके नारद मुनि अपने आश्रम आ गए। आश्रम भी ओ जिते हर वक्त परमेश्वर का नाम जपया जांदा है, उदा नाम लिया जांदा है। क्या तू इत्थे आके अपना दुख भुल गई, सारा समा परमेश्वर का नाम जप के बतान लगी। ए जो नाम जपदी है परमेश्वर दियां कथा कहानियां सुन दी है, उदा असर एदे गर्भ विच है, पोस्ते हो रहे है। क्योंकि कहंदे ने जो मां खावे उदा असर बच्चे ते हुंदा है, ते जैसी मां दी बिरती होवे जहो जिहा सुने ओहो जिहा असर होण वाले बच्चे ते हुंदा है। हुण ए नाम जपदी नाम सुनदी है, उस नाम दा असर

बड़ा उग्र कठिन तप कीता। दूसरे पासे नारद मुनि दे आश्रम क्यादो ने एक बच्चे नु जन्म देता, जिस बच्चे दा नाम प्रहलाद रखिया गया, जिसनु आपां सारे प्रहलाद भगत करके याद करते हैं। उधर हरनाकश की तपस्या पूरी हुई, भगवान ने प्रत्यक्ष प्रगट होके कहा, ऐ हरनाकश, मैं तेरे तप से बड़ा प्रसन्न हां, मंग तेनू की चाहिए।

ए वर दे कि मैं मरा ना। भगवान ने कहा कोई चंगा वार मांग, ए वार मांग के तू दुनिया से जुलम करेगा। अक्सर होता है कि जदों किसी कोई ताकत आ जावे वो पला कट करता है, जुलम ज्यादा करता है, पर जड़ा जुलम करता है उसका अंत बहुत माड़ा होता है। भगवान ने कहा है हरनाकश चंगा वर मांग जिहदे नाल दुनिया का भला होवे। हरनाकश कहन लगा भगवान वर देना है तो एहो ही दे कि मैं मरा ना, मैनू होर कोई वार नहीं चाहिए। तो जिन्नी कु बंदगी इंसान करदा है उतनी शक्ति परमेश्वर उस नूं दिंदा है। कहन लगे चंगा तेरी भगती दे वस हां, जो तू मंगेगा मैं तेनू देंगा। पर एक गल है, चंगी मंग दा फल चंगा हुंदा है, माड़ी मंग दा फल माड़ा हुंदा है। हरनाकश ने मंगे ना मैं देने मरा, ना रात मरा, ना पानी विच मरा, ना सुके ते मरा, ना धरती ते मरा, ना आकाश विच मरा, दुनिया का कोई भी हथियार मैनू मार ना सके, ना मैं आदमी कोलू मरा, ना मैं किसी जानवर कोलू मरा, ना किसी औरत कोलू मरा। सारे बार ले ले भगवान ने कहा चंगा भाई भगती तू कीती सी ते जैसा कोई वर मंगे मैनू देना पैंदा है, ए वर तेनू दिता। हरनाकश बड़ा खुश होया, हुण मैं मर नहीं सकदा, मैं जो चाहवां वो करांगा। हरनाकश वापस अपनी राजधानी आया, राजधानी उजड़ी देखी बड़ा गुस्सा चढ़िया। बची हुई सेना इकट्ठी कीती, पता लग गया कि मेरी राजधानी इंद्र देवते ने उजाड़ी है। बड़ा गुस्सा चढ़िया। कुछ देर बाद नारद मुनि हरनाकश जी घर वाले क्या दो ते प्रहलाद भगत नूं लै के उत्थे हाजिर होए। नारद मुनि नूं हरनाकश ने नमस्कार कीती। नारद मुनि कहन लगे हरनाकश ऐ तेरी अमानत, ऐ तेरी घरवाली, ऐ तेरा लड़का, इन्हां नूं सांभ लै तां कि असी अपने आश्रम वापस जाइए। हरनाकश बड़ा खुश होया, अपनी घरवाली नूं मिल

पैदा होया है वो मेरा भगत है। प्रहलाद ने अपने पिता का नाम जपना नहीं, एक घर विच लड़ाई शुरू हो जानी ते हौली हौली ऐसे घर की लड़ाई ने हरनाक्ष का नाश करा देना है ते दुनिया नू हरनाक्ष दे मरण दे नाल ही

पढ़ाई तो पहला जेड़ा जरूरी सबक है वो तुसा सारे ने लिखना है ते बोलना है। सारे बच्चों क्या अपनिया पट्टिया ते लिखो ते बोलो जले हर नाकश फले हर नाकश। हर नाकश ही रब है, हर नाकश ही भगवान है। ता उस वक्त जो प्रहलाद ने किया कबीर साहब ने

देश की का छोटी उम्र है, पिता वाल देखे जिरे चेहरे ते बड़ा गुस्सा है, देखे प्रहलाद मेरा नाम जाप

जे तेन अपने रब से भरोसा है इस तत्ते थम जफी मार जड़ा अग की तरह सड़दा पे नाले हरनाकश ने तलवार खिंच ली।

धरती से हैं, ना आकाश से, ना तो पानी विच हैं, ना सुखे से, ना मेरे हाथ विच कोई हथियार है। जद सारे वर परमेश्वर ने गनाए ते नाले के देख ले, ना मैं औरत हां ना आदमी। सारे वर पूरे, अद्धा शरीर आदमी दा है, अद्धा शरीर शेर दा है। जदू हर नाग ने कहा, हां भगवान जिन्ने वर मैं मंगे सन सारे पूरे ने। परमेश्वर बड़ा बेअंत है, गुरु हमेशा चेले कोलो एक गुण वध रखदा है। की पता है चेला कदू हंकार विच आके ते मुकाबले ते बह जावे, ते जेड़ा चेला मुकाबले ते बैठे

बनारसू चिरिया कर दे सन। सिकंदर लोधी दे सामने हुए सिकंदर लोधी ने कहा, ऐ कबीर तू मुसलमान है, तू सुन्नत नहीं कराई, सुन्नत करा ते राम राम छड़। कबीर साहब ने कहा, ऐ बादशाह परमेश्वर एक है, ओदे नाम कई ने, किसे नाम नाल भी उन्हों याद कर लो।

गंगा ते डुबण वास्ते लै गए, पर मैं बड़ा हैरान होया इन्हां लोकां दी अकल ते। एक पास कहंदे ने गंगा मां है पापां दा नाश करदी, ते उसे गंगा मां विच ए मैनूं

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

सातम उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू ज्ञापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

चक चक रहे देव दानंद, चक चक व्योम विवानंद, आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे, प्रेमन एविद जो कमाओ सिंघी साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानव मुझे छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेषंजम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे। प्रेमन ए विद जो कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे। प्रेमन ए विद जो कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

देवदानं छक छक व्योम विवानं आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान भे।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी सच अकपट कंठला ध्यान बैभू चढ़ाओ ताकि गहो आत्म बस करके।

समुपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भे संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

देवदानं छक छक व्योमभिवानन्द आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

देवदान उन्द छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बै

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंघी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानव मुन छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वै

देवदानंद छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताकि गहो आत्म बस करके।

आनंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

उगटैतान तरंग रंग अज्ञान गीत बंधानंग चक चक रहे देवदानंग छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्मोपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वै

देवदानव छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश दे संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानव छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठ लाध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके भेद

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

दिवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आनंद आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानव छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

संग आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

चक चक रहे देव दानंद छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

हे देव दानव छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठ लाध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बै

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताकि गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

उगटैतान तरंग रंग अज्ञान गीत बंधानंग चक चक रहे देवदानंग छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भे संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश वेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

संग आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कब भू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंघी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश दे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कब हो व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

हुन जवानी आ गई। मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नूं जपन दा चेता कराउंदा तां कहिंदा जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे न उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इस लई जे जपना है तां फिर हुणे ही जप लै। चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जे भा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे।